0: खातामा रोज रोज खुवाउनु पर्छ कर्म अनुसार थालमा कतै पातमा।
1: धरती भई मार्गमा म हिँडाथे एक दिन हरिद्वारामा एक विधुवा बसेर पीरामा रुन्थिने बिचारी उहाँ सामुमा गएर मैले सोधे भयो के भनी
2: गयो ठुलो लडाई भयो सुपयुक्त शुक्र पितामा कोही नदीमा पर्यो कोही ब्राह्मण कोही सरप परदा जुवा देखा नामके माथि भइकन सरा तहाँ गए खेलिरहेका थिए
1: मा घर हो प्रहाल घर हो दाहकी छोरी म यही वर्ष महापति मरि गए मेरो विपत के कहुँकी मथि विवाह गरी दिए बुढा कुरुपना यही वर्ष महा

दही चोरे माखन चोरे चोरे चोरी साड़ी धर्मानंत पाप चोरे तारे भव दला पारी नारायण ए लै जाऊ पर

कृष्णा कृष्णा बोलना लाई पड़ गई ना हई मोरा, कृष्णा कृष्णा भजदा भजदै मन को पर्दा खोला, भवजाल पारी जाने कृष्णा नाम बोला।

0: लाई
1: कोई जननी नी होला प्यारा प्रभु आई नारायण
0: ए
1: दर्शन दिनु होस
0: ए हामीलाई पनि

0: Media Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

सुजन बीके अफिसियल यूट्यूब चैनल में सर्वत्र उपलब्ध छ। हेर्न र सुन्न नभुल्नुहोला। लोक सांगीतिक कोशेली मठ मन्दिर धाएर कसम खाएर।

0: पानी आजुरा को बेची सावानी आई रही चुमा पानी ओरी ओ राजा रानी रानी आई उन संसार की नहीं रही ले यो जीवन ऐसा ही सुख का था ना यो घर को पी रही ले ओरी ओ उकाली जान को सबले ते ढूंगो गलां दा गल दाई ना गारा को मैंचे ना विजय सामन दाना ही फल दाई ना
1: यो कालो बन्नी वेला गाऊं
2: ये शुरू करनी वेला ची की गाई शायद शुरू
1: में से बयाना को झूल के गाऊं शीता को तोपनी बात इमरो बैठी चावनी आई रे चुम्मा पनी
0: मेरो लेडी हरी आवानो कांचो ही पाता पाके को खुर्शानी बागमती दाई यो थमाई समझाऊनी बिरसानी ओरी ओ शीरा माहेरा सुना को सेली छाती माहेरा उठाक ग्याम्पा माहेर तू हवल दरवाजे समल को साई नौपा ओरी ओ
1: पहला तो चोपा डंगाऊं थे आज अपने गाऊं थे अब किन वाने उल मुल्मा अली बीच किंचे बाबा

कोलकाता, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल बेलरू, कन्याकुमारी तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वारिका गुजरात, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग साथ ही सबै धाम क्षेत्र में रहकर प्रसिद्ध मंदिर दर्शन कराइने। यो यात्रा केही स्थानमा बस ट्याक्सी बाहेक बाँकी सम्पूर्ण यात्रा भारतीय रेलको विशिष्ट श्रेणी द्वारा गराइनेछ। अन्य सेवा सुविधा लागत समय सम्पूर्ण जानकारीको लागि विष्णु अधिकारीलाई सम्झनु होला। सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीकोट दोलाखा।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।